0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।

0: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल के होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
1: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik rahe hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade-in ate finance options be available. Aao te apni navi Ford da test drive karo, business fleet lai gal karo. Vehicle experts Tim Forbes ya Kori Nal, Radio Hanji de hawale nal pao, 10 saal di free service. Chadston Ford, ready, set. जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: भोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घर विच देखना ना भूलियो। ओए भोले ओए 2
3: जी की हाल है पिट दर्द दा
1: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू इदे बारे दसन लई।
3: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654922।
1: चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 04900054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ।
4: हिसाब लगाउन उपकरणां दी तुलना करन अते भरोसे योग ट्रेडीज नूं इक्को थां ते लब्भन च मदद करदा है। तुसी बिजली दे बिलां ते $2000 तों वी वध दी सालाना बचत कर सकदे हो। कि तुसी शुरू करन लई तैयार हो easyelectricsec.com.au ते जाओ। बिजली बिलां ते बचत करना है बहुत आसान SEC दे नाल। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न वालों जारी।
5: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
1: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 04332802552 ते 04332802552 ते। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: Baljeet, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਐਲਰੀ ਵੇਖਣ ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ ਚਲੀਏ।
6: ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀਨੋਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
3: ਓ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈਂਡੀਨੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਐਲਰੀ ਵੀ। ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ 99 ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 ਲੌਨਸਡੇਲ ਸਟਰੀਟ ਡੈਂਡੀਨੋਗ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 04992525545 ਤੇ।
7: ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
8: ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ
7: ਕੀ ਮਤਲਬ?
8: ਓ ਕਮਲੀਏ, ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੱਧ ਗਈ।
7: ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣੇ।
8: ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਬਚਤ ਤੇ ਲਗਵਾਓ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ। ਕਾਲ ਸਨ ਕਰੰਟ 0448-046-494 ਤੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਸਨ ਕਰੰਟ। ਦਿਓ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਓ $200 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ।
9: ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਬਾਥਰੂਮ ਵੈਨਿਟੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ? ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆ ਗਿਆ ZJ ਸਟੋਨ ਮੈਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇੱਕਦਮ ਕਲਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਟੋਨ ਬੈਂਚ ਟੌਪਸ ਫਾਰ ਕਿਚਨ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲਾਂਡਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਗੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 0400-045-555 ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 104 ਕਾਲਿੰਸ ਰੋਡ, ਮਿਲਟਨ।
10: ਵਾਓ, ਤੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ।
11: ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੇਰੀ ਦੇ ਪਿਓਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ ਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰੇਂਜ ਗ੍ਰਾਸ ਫੈਡ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਰ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਲਾਸ ਕੰਟੇਨਰ ਚ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
10: ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰੋ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਦਾ ਪਿਓਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੇਅਰੀ ਡੋਟ

0: एक ट्रेंडिंग खोल दी।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू
1: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: If you can understand when I start Punjabi vich bolna, ta tusi Victoria Police vich naukri karan layi us ton vi vadh yog ho jinna tusi sochde ho. Vadhiya shuruati tankha naal shuru karo ate naukri dauran dooji bhasha di varto karke patte kamao. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Sona chahida.
4: Parosa chahida.
3: Quality te buyback vi chahida. Chale aao. Delhi Jewelers, Stockland, Point Cook vikhe. Jithe buy carat gold, classy silver, dazzling diamonds, ate gemstones. Custom jewelry, thwade order te ready. Purana sona buyback and exchange turant. Cash chahida. Gold loan, easy and safe. Repair, bullion buying, selling, sab ek hi jaga. Te ovi wajab rate te. Delhi Jewelers, 310/2, Main Street, Point Cook. Call 0493-536-042.
5: Wow, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
6: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
5: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
7: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
8: की होया
7: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
8: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
7: या 90-77-97-33
8: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
7: याद रखो 9077-9733।
8: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
7: हर कदम तुहाडे नाल।
9: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
10: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे परदेस विच समझाऊंगा किवें।
9: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते फ्री।

0: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਅਗੇਨ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਮੇ ਫਲਾਈਟਸ ਪਕੜਨੀਆਂ ਤੋ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਉਂ ਹੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਛੋੜ ਕਰ ਤੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਕੋਨਮੀ ਸੇ ਕਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਾਰੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਨਸੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ?
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੰਗ ਪਿਸਟਿੰਗ ਸਾ ਨਾਮ ਔਰ ਬੜਾ ਟਵਿਸਟਿਡ ਸਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਥੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਗਗਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ।
0: ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ। ਲੌਂਗ ਡਿਊ ਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਉਸਕੇ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੇਅਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਪਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਅਗਰ ਹਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਲੇਕਰ ਆ ਪਾਏ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਹਮੇਂ
1: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰੂਵ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਫਲਾਈ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂ ਐਸ ਮੇਂ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਬ ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ
0: ਜੀ।
1: ਉਸ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਅਭੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਵੋ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਭੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਮੈਲਬਰਨ ਸੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ
0: ਜੀ,
1: ਕਰੈਕਟ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਰਸ ਮੇਂ, ਜੁਲਾਈ ਔਗਸਤ ਸਪਟੈਂਬਰ
0: ਜੀ।
1: ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈ 12,000 to 15,000 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਟੋਪ ਟੀਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨ
0: ਜੀ।
1: ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ 2,000 to 2,500 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ,
0: ਕਾਫੀ
1: 8-9-10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਅਬ ਸਰ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਂ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 2 times ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਟੂ ਪੈਰਿਸ ਕੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 80,000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ
0: ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਆ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ।
1: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ 200-300, ਉਨ ਸਭਕੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ
0: ਜੀ,
1: ਕੌਂਟਸ, ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਓਕੇ,
1: ਕੌਂਟਸ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਕਾ, ਵੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ।
0: ਵੈਲੋਸਿਟੀ
1: ਤੋ ਆਪਕੇ ਜਿਤਨੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇ ਹੱਥ ਬੋਲ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 70-80%, ਇਫ ਨੋਟ 90%, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਂਗੇ। ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਏਮੈਕਸ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਕੌਂਟਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਂਗੇ, ਪਰ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਯੂਜ਼ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਫਾਸਟ ਅਰਨ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਪਸ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਤੋ ਮੈਂ ਐਵਰੀਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਥਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ
0: ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼
1: ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ,
1: ਨੋਟ ਜਸਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਂ ਮੈਲਬਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੋ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਮਚ, ਉਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਨਕੋ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਜੈਸੇ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬੜੀਆ ਹੋਟਲ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕੁਛ ਦਿਲਾ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ।
0: ਓਕੇ,
1: ਔਰ ਉਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ 50% ਫਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਐਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 50% ਆਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 9,000 ਕੀ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਜਸਟ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਸਿਰਫ ਉਤਨਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਪ ਉਹ 9,000 ਕੀ ਜੋ ਟਿਕਟ ਹੈ ਵੋ 4.5 ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
0: ਓਕੇ,
1: ਆਈ ਗੋ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੇ ਵੀ ਆਗੇ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸੇ ਆਪਣੇ ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं ना फ्री पॉइंट्स, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपने वो कैसे कमाने हैं ताकि जो ये 50% है वो चला जाए 90% तक. अगर आपके ज़्यादा हो तो एक एग्जाम्पल दूँ.
0: जी जी.
1: मेरा जो बेस्ट है अभी तक का एग्जाम्पल वो है मेलबर्न टू सिंगापुर विद सिंगापुर एयरलाइंस इन फर्स्ट क्लास फॉर $95. अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो वहाँ पे ये एक वीडियो है, सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट क्लास मेलबर्न टू सिंगापुर 2024 में मैं गया था एंड आई यूज माई पॉइंट्स. और वो सारे जो पॉइंट्स मैंने अर्न किए थे, कमाए थे, उनकी कोई कॉस्ट नहीं थी बिकॉज दैट्स जस्ट थ्रू नॉर्मल स्पेंड. और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ. देर आर वेज, तरीके हैं पॉइंट्स कमाने के बहुत फास्ट.
0: मेरा इस पर यही आ जाता बेसिकली सवाल ना, कि काफ़ी लोगों को पता होता है कि यार अगर क्वांटस पॉइंट्स हो मेरे पास तो है ना फायदा है. ये कंपनियां अपने लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ को मार्केट भी करती हैं, राइट?
1: बहुत ज़्यादा कर रहे
0: हैं. पर ये आ जाता है कि जब आप ये, ज़्यादातर आदमी इस वजह से डरता है यार ये ना कहने की बात नहीं है, होता ना कन इदा नहीं फड़या इदा फड़ लिया.
1: हाँ जी, हाँ जी.
0: कि बात वहीं पर आ जानी कि मेरा खर्चा थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना ही हो जाएगा जितने की शायद मैंने टिकट लेनी हो, है ना. तो कैसे इन, अगर एक हम केस स्टडी पकड़ लें,
1: हाँ जी,
0: अगर मैं एक ऐसी केस स्टडी ले लूं जिसमें मैं, क्योंकि मेजरली देखने वाले जो होंगे और सुनने वाले हैं, हम लोग हॉलीडेज के लिए तो काफी जगहों पर 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार जाते हैं, पर इंडिया बहुत चक्कर लगता है, हर
1: बहुत चक्कर लगता
0: है. और यूजली फैमिलीज की फैमिलीज जाती हैं, है ना. तो एक
1: मिनिमम 4 लोग,
0: है ना. तो एक तो इस पर यह बात है कि कैसे कहते हैं हम कि ऑर्गेनिक खर्चे से हम कर सकते हैं, एक केस स्टडी अगर उस पर हो जाए. और सेकेंडली हम क्योंकि बिजनेस के बारे में या फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, दिस कैन वर्क ऑन इकोनॉमी आल्सो, राइट? समझो अगर 4 लोगों की फैमिली और अगर इकोनॉमी करना तो उस पर भी चल सकता है.
1: इकोनॉमी तो और भी इजी है.
0: हाँ, तो आप इस पर पहले ऑर्गेनिक कैसे होता है कि मेरा आम जो खर्चा है, ग्रोसरी का, पेट्रोल, इंश्योरेंसेस, घर की, गाड़ी की, ये सब जो पता है मेरे को ये खर्चे करने पड़ेंगे, है ना, और उसमें हम कैसे ऑल्टरेशंस लेकर आ सकते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हो लोगों को कि वहां से हमें पॉइंट्स आना शुरू हो जाए.
1: तो मैं नॉट ओनली आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपके व्यूअर्स की हेल्प भी करूंगा
0: जी,
1: सो दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिकली डू इट. 9 बजे सुबह वो लोग ये कर सकते हैं.
0: ओके,
1: ठीक है
0: जी.
1: इज इट ओके?
0: जी जी जी, बिल्कुल.
1: सो पहला एग्जांपल है, हम लोग शॉप करते हैं एवरीडे रिवॉर्ड्स, मतलब वुलीस पे, वुलवर्थ्स पे.
0: जी,
1: ठीक है. बहुत लोग जो है उनका फ्री रिवॉर्ड्स लेते हैं
0: जी,
1: उनका एक पेड रिवॉर्ड्स भी है.
0: ओके,
1: वो $7 मंथ का है.
0: Okay.
1: बहुत लोग लेते नहीं, वो कहते हैं $7 देके क्या फायदा, कुछ करना तो है नहीं.
0: बिल्कुल.
1: बहुत लोग ये नहीं देखते कि वो $7 नहीं है, वो एक्चुअली फ्री है.
0: ओके,
1: अब पूछो फ्री कैसे है?
0: कैसे?
1: क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपने $70 की शॉपिंग करी 10% आपको वापस मिल जाना.
0: अच्छा, तो
1: फ्री हो गया ना?
0: तो काफी
1: और 70 से काफी ज्यादा करते हैं जिनके बच्चे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि लोग जाते हैं. और ये हम बहुत लो लेवल की बात कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो दिस इज एट द लोअर लेवल. तो आपके व्यूअर्स ये ना समझे कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ.
0: जी जी,
1: ठीक है. तो दिस इज एट द बेसिक लेवल. तो एक कोई भी एवरेज फैमिली ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं उनको कोच करूँ या वो मेरे फॉलो करें इंस्टाग्राम या टिकटॉक या जो भी है, दे कैन अर्न बिटवीन 50 to 100,000 points पर ईयर जस्ट फ्रॉम वुलवर्थ्स एंड कोल्स without spending more than they are already doing. Example, अब हम जिनके बच्चे हैं वो सारे मूवीज देखते हैं, किंग पिन बोलिन जाते हैं, जेबी हाईफाई से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, सबके पास आजकल 13 साल की उम्र से आईफोन है, गैजेट्स हैं, एप्पल मैक है. तो अभी आप कॉल्स पे जाओ या वुलीज पे जाओ, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते डील लगी होती है 20 points per dollar ऑन एप्पल गिफ्ट कार्ड्स.
0: जी,
1: ठीक है.
0: 20 points per dollar
1: ऑन TCN हिम गिफ्ट कार्ड्स. अब जितने भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, गारंटी के हाथ बोल रहा हूँ, 70% से ज्यादा या तो Uber Eats से ऑर्डर करते होंगे
0: जी,
1: या Uber Ride लेते होंगे
0: जी. बिल्कुल,
1: कम से कम 70% बोल रहा हूँ
0: जी,
1: ठीक है. अब TCN हिम है, TCM हर है, कितने कार्ड आते हैं
0: जी,
1: उनको आप Uber में कन्वर्ट कर दो.
0: ओके,
1: 5 मिनट का काम है
0: जी.
1: आपको Uber वाउचर मिलेगा, अपने वॉलेट में डाल दो Uber के ऐप में. एक्सेप्ट instead of connecting it to your bank, visa or master, या Amex या कोई भी कार्ड से, आप
0: सीधे Uber से
1: जाओ, कार्ड खरीदो, बोलिस तो आप जा ही रहे हो, कोल्स तो आप जा ही रहे हो, ये कार्ड खरीदो, टॉप अप करो, आपको 20 points. अगर आपका साल में 5,000 भी खर्च होता है, खाने पीने पे, ऊबर से या ऊबर राइड्स पे, बहुत होगा तो बहुत ज्यादा होता है, मैं एवरेज ले रहा हूँ
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है 5,000, व्हाट्स 5,000 बाय 20,
0: 100,000, अच्छा वाह,
1: अभी हमने कोई किसी और स्ट्रेटजी की बात नहीं करी है, ठीक है, और 100,000 एवरीडे रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है पुलिस के इक्वल्स टू 50,000 क्वांटस,
0: तो आपके व्यूअर्स शिफ्ट हो जाते हैं,
1: हाँ वो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन एक वंस ऑफ है, कनेक्ट कर दो, अपने आप पॉइंट जाएंगे, शॉपिंग करी, आपकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले पॉइंट आपके क्वांटस के पॉइंट्स में पहुंचे होंगे, सो आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए वुलीज इज क्वांटस और कोल्स जो है वो फ्लाईबैस के माध्यम से जाता है वेलोसिटी में,
0: वेलोसिटी में
1: जी
0: ठीक है,
1: कुछ नहीं करना, शॉपिंग करनी है, स्कैन करना है और ठा करके पॉइंट्स आपके क्वांटस में आ जाएंगे, सिमिलरली कोल्स में गए फर्क इतना है, क्वांटस आ जाएंगे उसी सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो कॉल्स के थ्रू 3 दिन लगाते हैं, उनका सिस्टम अलग है,
0: आने चाहिए बस बेसिकली
1: आ जाएंगे,
0: ठीक है,
1: यू डोंट हैव टू वेट फॉर वीक्स और इयर्स, और एक और स्टैटिस्टिक, एक एवरेज ऑजी, चाहे आप इंडियन हो, ग्रीक हो, जो भी हो, साल में एक एवरेज बंदा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 100,000 to 200,000 पॉइंट्स कमाते हैं इफ दे नो व्हाट दे आर डूइंग और इफ दे थिंक दे नो, मतलब उनको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा कुछ आता है, मैंने आपको 5 सेकंड में एक ऐसा तरीका बता दिया जो आप 50,000 पॉइंट एक एवरेज यूजर सिर्फ एक स्ट्रेटजी से कर सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक है, आप कपड़े खरीदते हो, जैकेट शूज खरीदते हो
0: जी,
1: अब कितने गिफ्ट कार्ड हैं जो हर हर महीने लगे होते हैं, हर हफ्ते लगे होते हैं
0: उसी पे,
1: लोग आईफोन खरीदते हैं
0: जी,
1: लोग नया टेक खरीदते हैं, ये कैमरा लगे हुए हैं खरीदते हैं
0: जी जी जी,
1: यू कैन अर्न 10 points पर डॉलर, नॉट 1 point पर डॉलर, 10 points पर डॉलर, और अगर हम बड़ा खर्चा ना भी लें, एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात कर लें, बिजनेस तो आप छोड़ दो, 1 to 5 lakh पॉइंट कोई भी नॉर्मल हाउस होल्ड कमा सकता है इजीली,
0: जो पक्के यूजुअल खर्चे हैं उनमें करते हुए,
1: उनमें अभी हम बिजनेस तक पहुंचे भी नहीं है, अभी हम बिजनेस, हालांकि मेरा जो प्रोडक्ट है सर्विस है दैट इज गेड मोर फॉर बिजनेसेस, क्योंकि साफ सी बात है उनका खर्चा ज्यादा है तो पॉइंट्स भी ज्यादा आएंगे और जल्दी आएंगे, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सारे व्यूअर्स की
0: जी, ठीक,
1: टोटल व्यूअर्स जितने भी हैं, सिर्फ सिंपल चीजें करने से 1 to 5 lakh पॉइंट, अब आते हैं दूसरी बात जस्ट क्विकली, 3 lakh पॉइंट ले लेते हैं, 3 lakh पॉइंट का मतलब क्या है
0: जी,
1: कमा तो लिया आपने, 3 lakh पॉइंट का मतलब है कि आप अ फैमिली ऑफ टू, हस्बैंड वाइफ और टू फ्रेंड्स और अ कपल और अ पार्टनर कैन गो टू एशिया एंड कम बैक इन बिजनेस क्लास,
0: 3 lakh पॉइंट पे,
1: हाँ जी,
0: मतलब एक, सिर्फ एक बंदे के 1.5 lakh की टिकट हो गई आने जाने की,
1: एवरेज 70,000 की भी हो सकती है, 80,000 की भी हो सकती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, मतलब कि सिंगापुर, बैंकॉक, वियतनाम, बाली, हांगकॉन्ग, ठीक है, एशिया में मोस्ट प्लेसेस में आप 3 to 3.5 lakh पॉइंट में आ सकते हो, अगर आपने ऑर्गेनिकली अर्न किया है, सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं, अब टैक्सेस सुनो कितने के होते हैं, 200 to 500 के बीच में
0: जी,
1: मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो 500 लगा लो, दो बंदों के 1,000 हो गया रिटर्न, तो अगर रिटर्न 1,000 है, एक का दो का कितना हो गया,
0: 2,000 हो गया,
1: मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रैवल एजेंट 2,000 में दो लोगों की टिकट बिजनेस क्लास में मेलबर्न टू एशिया करता है,
0: ओके जब आई गेट योर पॉइंट है ना, जब आप ये कहते हैं कि 50,000 तो हम इसी में से ही निकाल सकते हैं सिर्फ वूलीज में से, अगर आपका 5-6 हज़ार का है ना, एक स्ट्रेटजी होगी है ना, ऊबर कैश की तरफ से भी कर सकते हैं कि अगर आप ऊबर का कार्ड कर लें तो उसमें भी कोई ना कोई है ना,
1: कॉल्स के निकलते हैं सिर्फ ऊबर के,
0: ये सेट प्रेसिडेंट पक्के ही होते हैं कि ये चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम की, आज है कल वूलीज बंद कर दे, या फिर ये कुछ पक्के अदारे हैं, कोई पक्के बिजनेसेस हैं जो क्वांटस पॉइंट्स पर ताकि मिलेंगे ही मिलेंगे,
1: काफ़ी टाइम से 12 साल से तो मैं कर रहा हूँ और पिछले 4-5 साल से तो ये वूलीज कर ही रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं
0: जी,
1: बंद करने को तो सर कल कुछ भी बंद हो सकता है, राइट, कल किसने देखा, नो वन हैज़ अ क्रिस्टल बॉल
0: जी,
1: ठीक है ना, बट अभी कंसिस्टेंटली अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम ना भी लें, 3 साल से तो मैं और मेरे 300 से ऊपर बिजनेस क्लाइंट्स कर रहे हैं,
0: ओके,
1: रेगुलरली किसी ना किसी का आता है टेक्स्ट या कॉल कि मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देना है, कौन सा गिफ्ट कार्ड अभी चल रहा है, बिकॉज दे हैव नाउ रियलाइज, उनको पता लग गया है कि अब उनको सीधा कैश वूलीज जाके कैश नहीं देना, अब उनको अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, ठीक है, और तब करना है जब ये ऑफर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जिनके पास एम्प्लॉयज़ हैं या आप इंप्लॉयज को भूल जाओ, अब हमारे इंडियन कम्युनिटी में बर्थडे पार्टीज होती हैं
0: जी,
1: ठीक है, हम सबको कैश देते हैं, एनवेलप देते हैं, कुछ देते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड दे, अगर आप गिफ्ट कार्ड दे सकते हो, काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं उन वो तीन चार जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो वहीं से लेते हैं, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, आपका H&M हो गया, ठीक है, अब ये सारे जो रिटेलर्स हैं इनके अलग से गिफ्ट कार्ड आते हैं, जैसे TCN हो गया, हिम में आप 50 रिटेलर्स के पास जाके वो सेम कार्ड यूज़ कर सकते हो,
0: और ये इजीली फिजिबली मिल जाते हैं, मैंने देखा हर सुपरमार्केट में, कोल्स में और वूलीज में,
1: हर हफ्ते कृष्णा हर हफ्ते किसी ना किसी गिफ्ट कार्ड पे डील लगी होती है, एवरी वीक इस साल, अभी आज क्या हो गया, जून हो गया
0: जी,
1: सिर्फ दो हफ्ते ऐसे आए हैं जहां पे 10% ऑफ था,
0: ओके,
1: उसके अलावा हर वीक 20 points per dollar 10 points per dollar ऑन गिफ्ट कार्ड्स,
0: ओके,
1: ये अगर आप सोचो कि 100-150 स्ट्रेटजीज हैं, ये एक बता रहा हूं मैं अभी,
0: फिर बात ये आ जाती है, कई लोग इस पे बड़ा भाग जाते हैं, हाँ, कि यार इतना इतना कौन सोचे, क्या करे, कोई थंब रूल हो, कोई मुझे पता हो कि एक होता ना टिप हो, एक ट्रिक हो कोई, कि मुझे पता है कि इस तरह ट्रैक करना, एनीथिंग विच इज शेयरेबल ऑन योर पार्ट ऑल्सो, कि आप शेयर कर सको छोटा मोटा, मुझे पता कि ऑब्वियसली यू रन अ बिजनेस,
1: थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर ट्रैकिंग की बात है, देखो हम भी इंडियंस, हम बहुत वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वी पे द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, सो इफ यू, जहां तक ट्रैकिंग की बात है, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, आप एक स्प्रेडशीट बना लो, सिंपल स्प्रेडशीट, आजकल तो AI आ गया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ChatGPT क्लॉड, लोग ड्राइव करते करते अपनी ईमेल्स टाइप कर रहे हैं, आप उतना मत करो, आप ChatGPT को, और आपसे स्पीच टू टेक्स्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ बोलो, रिकॉर्ड करेगा, स्प्रेडशीट बन के आ जाएगी, आप जस्ट रिकॉर्ड करो। दूसरी बात आती है कि कितना फीजिबल है, इसलिए मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, बिकॉज इट्स ईजियर, क्योंकि उनको सिर्फ एक या दो मोटी मोटी स्ट्रेटजीज अपनानी है, ये सब छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू फॉर लाइक ऑल द व्यूअर्स, बट जो बिजनेसेस हैं, अगर वो सिर्फ अपना बिजनेस स्पेंड रीडायरेक्ट कर दें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50% तो ऐसे हो गया, बट एक साफ सी बात है कृष्णा, अगर आपको अप टू 90% ऑफ चाहिए, बिना एफर्ट के नहीं मिलने वाला,
0: दोस्त तो बात ठीक है,
1: ठीक है ना, कोई भी चीज बिना एफर्ट के नहीं मिलती, जितने भी लिसनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो आए हैं, बिना एफर्ट के नहीं आए, कोई स्टूडेंट बन के आया है, कोई PR लेके आया है, एक बंदा मुझे बता दो जो एक दिन के एफर्ट के पीछे सब कुछ करके आ गया हो, राइट
0: जी,
1: इट टेक्स एफर्ट, तो अगर आप चाहते हो कि आपको 90% बिजनेस क्लास सिंगापुर एयरलाइंस की लेस में मिले, और आप ये भी चाहते हो कि एफर्ट भी ना हो, कैसे पॉसिबल है
0: इसमें कोई, बिकॉज द मोर एग्जांपल्स आई गेट द मोर इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और लोगों के लिए भी उतने मेरे ख्याल से इजी होगा, कोई एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर समझा सकें, आपका पर्सनल हो या आपके किसी क्लाइंट की टेस्टिमनी के हिसाब से अगर हो,
1: सो अभी एक रिसेंटली मैं ग्रुप कोचिंग करता हूँ
0: जी,
1: राइट, आई डू 1-on-1 कोचिंग एंड आई डू ग्रुप कोचिंग, तो ग्रुप कोचिंग में अभी एक ग्रुप खत्म हुआ है, उसमें एक एशियन लेडी है, शी इज़ अ डॉक्टर यहाँ मेलबर्न में, नॉर्थ कट में, उनका अभी छोटा बच्चा है, टॉडलर, तो उनको सिंगापुर जाना था नेक्स्ट ईयर फरवरी में, बट उन्होंने नहीं बनाया प्लान, बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो इन इकॉनमी, बिजनेस सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कॉस्ट देखी 30 grand, उनका रहने देते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देन दे हर्ड अबाउट मी, उन्होंने मेरी एड देखी फेसबुक पे, बात करी, मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करी, देन दे ज्वाइन माई प्रोग्राम
0: जी,
1: ठीक है, अभी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी,
1: जस्ट ये स्ट्रेटजीज मैंने अभी शेयर करी हैं
0: जी,
1: सिर्फ ये करके लास्ट 2 months में उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि उन्होंने अपनी बिजनेस क्लास की टिकट्स खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बेबी के लिए 3600 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बुक करी है टू सिंगापुर रिटर्न,
0: अच्छा वाह,
1: $3,600 AUD फॉर 2 adults एंड अ टॉडलर रिटर्न, आप बता दो कि इट इज अ गुड डील और नॉट,
0: इट इज अ गुड डील, काफी गुड डील वैसे तो,
1: हाँ, अब ये जो लेडी है ये थोड़ी सी एनालिटिकल है, तो इन्होंने स्प्रेडशीट बनाई और देखा कि कितने घंटे लगे इनको ये सब कुछ करने में, 5 hours ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी व्यूअर से, अगर ये टिकट, वैसे ये टिकट्स 15,000 की थी
0: जी,
1: इफ़ यू डिवाइड 15,000 by 5 hours कितना आता है?
0: 3,000।
1: हाँ
0: हाँ,
1: अब आपके व्यूअर्स से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ योर व्यूअर्स वुड लाइक टू अर्न $3,000 पर आवर? सिंपल मैथ है ना
0: जी। इसमें एक अगर हम ये भी टेंटेटिव प्राइस बता सकें कि उसी सेम फ्लाइट में इकोनॉमी का अगर हम आइडिया लगाएं तो इकोनॉमी का क्या प्राइस रहा होगा?
1: इकोनॉमी तो कृष्णा और भी इजी हो जाएगी और भी सस्ती होगी। इकोनॉमी तो आई थिंक अभी पीछे फैमिली ऑफ सिक्स है तो एक ही प्लेन में 4 से ज़्यादा सीट्स मिलना मुश्किल होता है
0: जी
1: बिजनेस क्लास, क्योंकि अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है एयरलाइंस पे कि वो कितनी रिलीज कर रही हैं। बट उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी में भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी थी, उनको बस पैसे बचाने थे। राइट, साफ सी बात है। तो दे वर वेरी ओपन अबाउट इट। अब उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि $1,200 में फैमिली ऑफ सिक्स इज गोइंग टू इंडिया एंड कमिंग बैक।
0: वाओ,
1: फैमिली ऑफ सिक्स, क्योंकि बाकी उनके पॉइंट्स ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक मतलब गिफ्ट कार्ड्स, अभी मैंने इंश्योरेंस की बात नहीं करी है, होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस,
0: ये सभी चाहिए हर कोई रह लेता।
1: कार किसके पास नहीं होती आजकल? प्राइवेट टैक्स किसको नहीं बचाना? राइट, कार, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, आपके पास घर है, कंटेंट और होम इंश्योरेंस चाहिए। देर आर सो मेनी कंपनीज गिविंग यू अप टू 100, अभी कॉन्टेस्ट की डील चल रही है राइट नाउ एज वी स्पीक, 2,00,000 पॉइंट दे रहे हैं वो।
0: अच्छा,
1: प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे अप टू 200,000। वैसे एक बिजनेस को $2,00,000 खर्चा करना पड़ता है टू अर्न 200,000 पॉइंट्स। अब कितनी फैमिलीज हैं जो महीने का 500, 600, 400 दे रही हैं बट कुछ मिल नहीं रहा। और अगर यही 600 देके आपको 2,00,000 पॉइंट मिल रहे हैं 6 महीने में,
0: ह्यूज डील।
1: इट्स ह्यूज, ह्यूज।
0: और इसमें ये ज़्यादातर बिजनेस स्पेसिफिक रहती हैं ये डील्स वगैरह, कि अगर कोई कहते हैं नौकरी पेशे वाला कोई हो उसके लिए
1: कर सकते हैं, बट यू नीड अ फायर इन द बेली, लाइक एक बहुत ही जुनून चाहिए आपको करने के लिए। क्योंकि पहले पहले सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि एफर्ट लगेगा, कोई ईजी तरीका, तो वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढने में लग जाते हैं। राइट, बट अगर कोई भी बंदा या फैमिली 8 से 15 आवर्स अगर आप लगा सकते हो, मैं ओवर अ 6 मंथ पीरियड बोल रहा हूँ, इफ़ यू कैन डेडिकेट, क्योंकि कुछ टास्क में 5 मिनट लगेंगे, कुछ में 10 मिनट, कुछ में 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू अर्न पॉइंट्स कैन बी डन वाइल सिटिंग एट होम ऑनलाइन
0: एंड नो एक्स्ट्रा खर्चा ये मेन है।
1: बट ये मेन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको बिजनेस में ट्रेवल करना है और आप ये बोलो कि मेरी इकोनॉमी की टिकट 2,000 की आती है, 1,800 में नहीं हो सकता।
0: हाँ ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली यू विल गेट अ रिटर्न।
1: हाँ हाँ, लेकिन मेरे जो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि यार अगर हमें 2.5 की जगह 3 भी देने पड़े लेकिन 10 ना देने पड़े। अगर वो ये बात सुने तो 90% would put the hand up and say, yeah, मुझे 10 नहीं खर्च करने, लेकिन अगर 2 की जगह 2,200 या 2,500 या 3 खर्चने पड़े और बिजनेस क्लास मिल रही है, विच मीन्स लाउंज 40 किलो, हमें क्या चाहिए होता है? लोग वेट एडजस्ट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे। और एक और चीज है, जेट लैग। एटलीस्ट 5 families इन द लास्ट 6 days हैव टोल्ड मी कि हॉलीडे से आए, बेटी बीमार हो गई, स्कूल नहीं गई, गेस्ट घर पे कौन बैठा है? पेरेंट्स।
0: बिल्कुल सही।
1: और अगर बैठे हैं तो ख्याल किसको रखना है? पेरेंट्स को।
0: बिल्कुल।
1: तो वो प्रोडक्टिविटी कहाँ गई? पेरेंट्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी ना।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और जब वो बिजनेस में जाते हैं तो कोई जेट लैग नहीं होता।
0: ये वेट का तो बहुत इशू रहता
1: है, ठीक है ना।
0: पर्सनली बहुत रोता हूँ इस चीज को लेकर, तो आपकी बात तो सही है।
1: तो और प्रीमियम इकोनॉमी तो इतना आसान है कृष्णा, अगर आप बिजनेस को छोड़ भी दो, प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करना इज सो इजी फॉर अ फैमिली ऑफ 6, नॉट इवन 4।
0: अगर मैं इसे सॉरी आपको टोका अगर मैं इसे डाइसेक्ट कर दूं
1: जी,
0: मैं अगर पर पर्सन पर चलूं
1: जी,
0: तो अगर ऑन एन एवरेज मैं 80,000 पॉइंट कह लूं कि 80,000 पॉइंट में मेरे को वन वे की बिजनेस की टिकट मिल सकती है फॉर अ
1: आप 1,00,000 चलो मोटा मोटा
0: चलो 1,00,000 पॉइंट में ठीक ठाक बढ़िया एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस टाइप पे है ना, तो प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी सेम उसी फ्लाइट की कितने पॉइंट्स में मिल जाती है पर हेड?
1: हम सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें तो उनके जो फ्रीक्वेंट फ्लायर का नाम है वो है क्रिस फ्लायर
0: जी,
1: ठीक है, आपको 1,00,000 में अगर आप टाइम से करा लोगे तो 1,00,000 क्रिस फ्लायर में मेलबर्न दिल्ली मिल जाएगी
0: जी।
1: इकोनॉमी होगी आपकी प्रीमियम इकोनॉमी होगी अराउंड 75 की,
0: ओके
1: एग्जैक्ट तो मेरे को अभी नंबर नहीं पता,
0: बिजनेस का मुझे
1: पता, बिजनेस का मुझे पता बिकॉज आई डू इट एवरी डे। प्रीमियम इकोनॉमी होगी 70-80 के बीच में, 68 भी हो सकती है, अराउंड 70 लगा लेते हैं
0: जी।
1: और इकोनॉमी तो सिर्फ 50 में मिलती है। और एक और चीज आपके व्यूअर्स के लिए एक टॉप हैक बता रहा हूँ, अगर आपके पास सिंगापुर एयरलाइंस के पॉइंट्स नहीं भी हैं लेकिन आपके पास वेलोसिटी के पॉइंट्स हैं वर्जन ऑस्ट्रेलिया के, तो भी आप सिंगापुर एयरलाइंस की प्रीमियम इकोनॉमी बुक कर सकते हो एंड फॉर लेस पॉइंट्स देन सिंगापुर एयरलाइंस ओन प्रोग्राम।
0: ओके
1: मतलब जो उनका खुद का प्रोग्राम है
0: अच्छा
1: उससे सस्ते में उससे कम पॉइंट्स में आप वेलोसिटी के पॉइंट्स यूज करके सिंगापुर उन्हीं का प्रोडक्ट में आप फ्लाई कर रहे हो।
0: ओके अब इसमें एक और आ जाता सवाल कि अब अगर मैं देखूं लोगों का जो इंटरेस्ट है रुझान है वो इस तरफ काफी जाना शुरू हो गया पॉइंट्स वगैरह
1: जी
0: इकट्ठे करने पे, तो ये कंपनीज क्योंकि आप कह रहे हो आप यू बीन डूइंग दिस फॉर 12-13 इयर्स है ना, तो ये कंपनीज इंसेंटिवाइज अब ज्यादा कर रही है पहले से कि कम कर रही है?
1: 100% ज्यादा कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टेस 2,00,000 पॉइंट दे रही है
0: तो बढ़ रहा है, मतलब
1: बढ़ रहा है।
0: okay.
1: अभी AMP बैंक है। एक और चीज हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए, हमारे हम सेविंग्स में पैसा डालते हैं राइट 4.25% इंटरेस्ट जो भी है
0: जी,
1: उससे क्योंकि उस पे टैक्स लगता है
0: जी।
1: आप अभी AMP बैंक की डील चल रही है, आपको वो 1 point per $10 दे रहे हैं टू हैव इट इन योर बैंक अकाउंट।
0: Okay.
1: बहुत लोग ऑफसेट में रखते हैं ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत आपके व्यूअर्स होंगे जिनका 10-50-1,00,000 बैंक में ऐसे पड़ा हुआ है। उसको अगर आप AMP बैंक में डाल दो तो आपको महीने के 10-50,000 पॉइंट तो सिर्फ उस खड़े पैसे के मिल रहे हैं। मतलब इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। आप एक बार सोच कर देखो व्हाई विल अ बैंक डू दैट। ठीक है,
0: मैं इसमें ना बस ये आपने जितना बताया थैंक यू वेरी मच, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या हो गया था लाइफ में
1: जी
0: ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या घटना हो गई जो आपने इस तरफ रुख कर लिया
1: जी?
0: बिकॉज हैविंग सेड दैट ये मैं आपने क्या बताना है मैं ही बता दूं कि क्वांटस हो गए या वेलोसिटी वगैरह हो गया या फिर इन्होंने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिया किसी बैंक कंपनी का नाम लिया तो वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यू आर नॉट कमीशन्ड बाय देम।
1: नो,
0: आप उनके एजेंट नहीं है।
1: मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है,
0: एफिलिएशन किसी के साथ ऐसा नहीं है, सच नहीं है। ये आपने देखा खुद से किया और आपको लगा कि ये और लोग भी सीख सकते हैं राइट?
1: बिल्कुल।
0: तो ये आपने जब देखा तो कब देखा और फिर कैसे ठीक किया?
1: ओके सर, 2 अगस्त 2013 को मुझे आज तक याद है, मैं लंदन गया था अपने भाई से मिलने के लिए
0: जी।
1: वो 2 साल के लिए लंदन गया था।
0: ओके
1: तो उसने बुलाया मुझे, तो उस टाइम पे एक कार्ड हुआ करता था वेस्टपैक का क्रिस फ्लायर कार्ड जो अब नहीं है।
0: ओके
1: ठीक है, वो लेगेसी कार्ड है, वो बंद कर दिया
0: जी।
1: उस टाइम मेरे पास 90,000 पॉइंट थे।
0: ओके
1: अब एज यू डू आजकल सोशल मीडिया पे आप बैठते हो, ये एक चीज दूसरी पे चली जाती है, दूसरी तीसरी पे चली जाती है
0: जी।
1: तो मैं बैठा बुक करने के लिए टिकट, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड खोला, देखा ये 90,000 पॉइंट है। इससे पहले कि मुझे समझ में आता, मैं सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट के थ्रू मेलबर्न टू लंदन सिंगापुर एयरलाइंस बिजनेस क्लास $100 में बुक कर चुका था।
0: ओके
1: जब मैंने उसका बाद में प्राइस देखा तो वो 6,500 की थी उस टाइम पे।
0: अच्छा, उसने खुद से अपने आप को वहां पर ट्रांसफर किया? ओके,
1: क्योंकि मैंने अपने लॉगिन किया अपने क्रेडिट कार्ड के पोर्टल में देखने के लिए कि भाई कितना बैलेंस है क्या है, तो वहाँ पॉइंट्स लिखा आ रहा था 90,000। तो मैंने देखा कि क्रिस फ्लायर है, तो क्रिस फ्लायर तो सिंगापुर एयरलाइंस का प्रोग्राम है। देखा ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर साथ के साथ हो गए। हो गए तो वहाँ पे चीज़ लेके आ रही थी अवार्ड्स रिडीम। बटन दबाया, बैठे हो बटन दबाते हो, बटन दबाए तो डाला और टिकट आ गई अवेलेबल। 90,000 पॉइंट चाहिए थे, 90,000 थे
0: जी।
1: अब शुरू कैसे हुआ कि मैं चला तो गया बिजनेस क्लास में बड़ा खुश होके $100 में, लेकिन वापस आया इकोनॉमी में
0: पॉइंट खत्म हो गया
1: पॉइंट ही नहीं अब आप खुद सोचो आप इतनी चौड़ी आपने देखी है सीट सिंगापुर एयरलाइंस की
0: जी जी जी
1: ठीक है
0: जी
1: इतनी चौड़ी होती है
0: जी
1: राइट और इकोनॉमी कितनी होती है
0: हाँ,
1: आपको ऐसे खाना पड़ता है
0: मेरा तो ज्यादा एल्बो आप
1: अपने ये हाँ
0: यस
1: आपके मोड़े टकरा रहे हैं साथ वाले के साथ
0: जी
1: ठीक है तो जब मैं वापस आया तो मैं लिटरली टीयर्स में था जैसे कहते हैं ना मैन टीयर्स लिटरली टीयर्स में था तो मैंने फिर सोच लिया कि बस अब मैंने कुछ करना है इसको पढ़ना है तो वो अगस्त 2013 से लेके अगस्त 2014 तक मेरी उस टाइम पे बहुत स्टेबल जॉब थी तो मैंने अपनी इवनिंग्स और वीकेंड्स इसको डेडिकेट किए
0: ओके
1: और फिर अगस्त 2014 से लेके आज तक मैंने फुल प्राइस नहीं पे किया बट बिजनेस मैंने 2021 में शुरू किया एक फ्रेंड की हेल्प करी
0: okay.
1: तो उसने मुझे बोला कि यार तूने मेरे $20,000 बचा दिए 10 मिनट के अंदर उसके पास 1 मिलियन पॉइंट्स थे लेकिन उसको पता नहीं था करना क्या तो उसने कहा तू इस चीज दूसरों को सिखाता क्यों नहीं है एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड हेल्पिंग अदर बिजनेस ओनर्स
0: क्या बात है भाई रॉकस्टार में था टूटे दिल से ही म्यूजिक निकलता आपके ट्रॉमा से काफ़ी लोग सीख पाए हैं और सीख रहे हैं थैंक यू गगन जी शॉर्ट एंड क्रिस्प चैट करने के लिए हमारे साथ जाने से पहले एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट कह लें अपनी तरफ से या क्लोजिंग थॉट अपनी तरफ से और अपने सोशल्स और अपने वेबसाइट के बारे में बता दें हमारे व्यूवर्स को ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट यू
1: जी पहली बात तो ये है कि देखो पैसा बचाना किसको नहीं अच्छा लगता
0: जी
1: और अच्छा लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए
0: जी
1: ठीक है मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स वुड बी बिटवीन 30 and 60 years of age सो दे हैव लिव्ड देयर फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ और लोगों को होता है कि यार मैं अपना सेकेंड हाफ तो कम से कम थोड़ा सा कम्फर्ट में बिताऊँ तो जब हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं इतनी आउटगोइंग्स जा रही हैं अगर एक तरीका है उसको मैक्सिमाइज करने का बिना पैसे खर्च किए अभी ऑर्गेनिक पॉइंट्स की बात हो रही है हमने बिजनेस की बात तो करी ही नहीं ज़्यादा ठीक है अगर एक तरीका है तो मैक्सिमाइज इट तो आप क्यों ना करो स्पेशली अगर आपकी फैमिली को या तो उसमें कंफर्ट मिल रहा है या पैसे बच रहे हैं ठीक है नाउ इन रिगार्ड्स टू गेटिंग इन टच विद मी जो भी आपके बिजनेस व्यूअर्स हैं जो खुद का बिजनेस रन करते हैं दे कैन गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे वो लिंक्डइन हो चाहे फेसबुक हो चाहे टिकटॉक हो या फिर इंस्टाग्राम हो एंड यूट्यूब ऑल दे हैव टू डू इज टाइप इन टर्न लेफ्ट फॉर लेस क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो हम राइट टर्न होते हैं टू इकोनॉमी वेयर डू वी टर्न लेफ्ट इनटू बिजनेस एंड फर्स्ट तो मेरे बिजनेस का नाम उसी से आया टर्न लेफ्ट फॉर लेस तो अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डाल देंगे तो हर पोस्ट में मेरा या तो लिंक होगा या वेबसाइट होगी और अगर आपके बिजनेस लिसनर्स मेरी मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं जो हर महीने होती हैं इस महीने वो 24 जून को है देन द वेबसाइट एड्रेस इज एल पी ठीक है एल फॉर लीमा पी फॉर पापा LP जैसे लैंडिंग पेज होता है ना lp.turnleftforless.com
0: जी
1: और लास्ट थिंग अगर किसी को डायरेक्ट ईमेल करनी है तो वो info@turnleftforless.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं कोई भी उनका क्वेश्चन हो आपके अगर वो रेडियो हंजी करके लिखेंगे आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन
0: इसलिए तो बुलाया है कि जी रेडियो हांजी के हवाले से आप इनसे बात करें फ्री कंसल्टेशन ले एक बार और फिर बाद में जैसा आपका मन माने वन ऑन वन करनी है जी मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं ये था जी आज का सेगमेंट आपके लिए हम लेकर आए थे स्पेशली जानने के लिए कि भाई ये क्वांटस फ्लायर की दुनिया ये वेलोसिटी पॉइंट्स की दुनिया ये सब भी एक चलता हुआ एक पैरेलल सिस्टम है टू बुक योर फ्लाइट्स और पैसे बचाने के लिए पैसे खर्चा आजकल काफ़ी बढ़ भी गया है एपिसोड कैसा लगा और ये भी हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि जब आप गगन जी से बात करें तो आपको कैसा लगा और आपकी लाइफ में कोई खास तब्दीली आई या नहीं आई कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए ये था हमारा प्यारा सा स्पेशल सेगमेंट मैं हूं कृष्णा टेक केयर बाय बाय देखते रहें सुनते रहें रेडियो हांजी 1674 AM

एनीवेज लेट्स सी वेट करते हैं जी। एक होर खिचड़ी बन गई, खिचड़ी कहदी बल्कि कॉकटेल बन गई, कॉकटेल भी कहदी बनी बल्कि बनी नहीं हैगी। सो कॉकटेल टू की भी जिनी फजीहत कर ली उन्नी घट हैगी है। वैसे कॉकटेल टू दे विच ऐं लगे हले आनी है 19 जून नू आनी है फिल्म, बट लेट्स सी की बनता है। इहदा कृति रश्मिका ते शाहिद कपूर दी है फिल्म। इहदा भी एक गाना तुसी सुन लो वल्ला प्रोग्राम पर्दा बेपर्दा च नवे नवे गाने। अज एक बहुत एक गाने की मैं उड़ीक कर रहा, मैं हले तक सुनिया नहीं हैगा, मैं तुहाडे नाल ही लाइव सुनूंगा। वह सोंग केड़ा, वह पंजाबी दा अगे चल के दसदा वह केड़ा है, वो मैं उड़ीक कर रहा। अज ही रिलीज़ होया, तत्ता तत्ता गरम गरम तुहानू सुनाना।

0: बोला।
1: ओए पुली ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: बोले ने कसूते बसाते
1: ओए भोले ओए टू, कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए टू।

0: हाँ जी 1674 है।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच भी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ई है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ई स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: इश्क नहीं आसान, बस कितना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।
6: हाँ जी 1674 AM।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 पे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 साल तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
2: सूरज देवता
1: की मतलब?
2: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
1: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
2: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
3: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू इहदे बारे दसन लई।
3: होर सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।

0: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਅਗੇਨ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਮੇ ਫਲਾਈਟਸ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਤੋ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਉਂ ਹੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਛੋੜ ਕਰ ਤੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਕੋਨਮੀ ਸੇ ਕਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਾਰੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਨਸੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ?
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਸਾ ਨਾਮ ਔਰ ਬੜਾ ਟਵਿਸਟਿਡ ਸਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਥੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਗਗਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ।
0: ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ। ਲੌਂਗ ਡਿਊ ਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਉਸਕੇ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੇਅਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਪਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ, ਅਗਰ ਹਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਲੇਕਰ ਆ ਪਾਏ ਤੋ ਮੁਝੇ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਮੈਂ
1: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰੂਵ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਫਲਾਈ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂ ਐਸ ਮੇਂ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਬ ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭਕੋ ਪਤਾ
0: ਜੀ।
1: ਉਸਸੇ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਅਭੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਵੋ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਭੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਮੈਲਬਰਨ ਸੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ
0: ਜੀ,
1: ਕਰੈਕਟ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਰਸ ਮੇਂ, ਜੁਲਾਈ ਔਗਸਤ ਸਪਟੈਂਬਰ
0: ਜੀ।
1: ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈ 12,000 to 15,000 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਟੋਪ ਟੀਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨ
0: ਜੀ।
1: ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ 2,000 to 2,500 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ,
0: ਕਾਫੀ
1: 8-10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਅਬ ਸਰ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਂ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਟੂ ਪੈਰਿਸ ਕੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 80,000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ
0: ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੀ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਆ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ।
1: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ 200-300, ਉਨ ਸਭ ਕੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ
0: ਜੀ,
1: ਕੌਂਟਸ, ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਓਕੇ,
1: ਕੌਂਟਸ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਕਾ, ਵੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਹੈ। ਵੋ ਥੋੜੇ ਸੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ।
0: ਵੈਲੋਸਿਟੀ
1: ਤੋ ਆਪਕੇ ਜਿਤਨੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇ ਹੱਥ ਬੋਲ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 70-80%, ਇਫ ਨੋਟ 90%, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਂਗੇ। ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਏਮੈਕਸ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਕੌਂਟਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਂਗੇ, ਪਰ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਯੂਜ਼ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਫਾਸਟ ਅਰਨ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਪਸ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਮੈਂ ਐਵਰੀਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਥਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ
0: ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼
1: ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ,
1: ਨੋਟ ਜਸਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਂ ਮੈਲਬਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੋ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਮਚ, ਉਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਨਕੋ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਜੈਸੇ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬੜੀਆ ਹੋਟਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕੁਛ ਚਲਾ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ।
0: ਓਕੇ,
1: ਔਰ ਉਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ 50% ਫਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਐਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 50% ਆਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 9,000 ਕੀ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਜਸਟ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਸਿਰਫ ਉਤਨਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਪ ਉਹ 9,000 ਕੀ ਜੋ ਟਿਕਟ ਹੈ ਵੋ 4.5 ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਤੇ ਹੋ।
0: ਓਕੇ,
1: ਆਈ ਗੋ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਉਸਸੇ ਵੀ ਆਗੇ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸੇ ਆਪਣੇ ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं ना फ्री पॉइंट्स, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपने वो कैसे कमाने हैं ताकि जो ये 50% है वो चला जाए 90% तक. अगर आपके ज़्यादा हो तो एग्जाम्पल दूँ.
0: जी जी.
1: मेरा जो बेस्ट है अभी तक का एग्जाम्पल वो है मेलबर्न टू सिंगापुर विद सिंगापुर एयरलाइंस इन फर्स्ट क्लास फॉर $95. अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो वहाँ पे ये एक वीडियो है, सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट क्लास मेलबर्न टू सिंगापुर 2024 में मैं गया था एंड आई यूज माई पॉइंट्स. और वो सारे जो पॉइंट्स मैंने अर्न किए थे, कमाए थे, उनकी कोई कॉस्ट नहीं थी बिकॉज दैट्स जस्ट थ्रू नॉर्मल स्पेंड. और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ. देर आर वेज, तरीके हैं पॉइंट्स कमाने के बहुत फास्ट.
0: मेरा इस पर यही आ जाता बेसिकली सवाल ना, कि काफ़ी लोगों को पता होता है कि यार अगर क्वांटस पॉइंट्स हो मेरे पास तो है ना फ़ायदा है. ये कंपनियां अपने लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ को मार्केट भी करती हैं, राइट?
1: बहुत ज़्यादा कर रहे हैं.
0: पर ये आ जाता है कि जब आप ये, ज़्यादातर आदमी इस वजह से डरता है यार ये ना कहने की बात नहीं है, होता ना कन इदा नहीं फड़िया इदा फड़ लिया.
1: हाँ जी, हाँ जी.
0: कि बात वहीं पर आ जानी कि मेरा खर्चा थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना ही हो जाएगा जितने की शायद मैंने टिकट लेनी हो, है ना. तो कैसे इन, अगर एक हम केस स्टडी पकड़ लें,
1: हाँ जी,
0: अगर मैं एक ऐसी केस स्टडी ले लूं जिसमें मैं, क्योंकि मेजरली देखने वाले जो होंगे और सुनने वाले हैं हम लोग हॉलीडेज के लिए तो काफी जगहों पर 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार जाते हैं, पर इंडिया बहुत चक्कर लगता है,
1: बहुत चक्कर लगता
0: है. और यूजुअली फैमिलीज की फैमिलीज जाती हैं, है ना. तो एक
1: मिनिमम 4 लोग,
0: है ना. तो एक तो इस पर यह बात है कि कैसे कहते हैं हम कि ऑर्गेनिक खर्चे से हम कर सकते हैं, एक केस स्टडी अगर उस पर हो जाए. और सेकेंडली हम क्योंकि बिजनेस के बारे में या फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, दिस कैन वर्क ऑन इकोनॉमी आल्सो, राइट? समझो अगर 4 लोगों की फैमिली और अगर ऑन करना तो उस पर भी चल सकता है.
1: प्रीमियम इकोनॉमी तो और भी इजी है.
0: हाँ, तो आप इस पर पहले, हम पहले ऑर्गेनिक कैसे होता है कि मेरा आम जो खर्चा है, ग्रोसरी का, पेट्रोल, इंश्योरेंसेस, घर की, गाड़ी की, ये सब जो पता है मेरे को ये खर्चे करने पड़ेंगे, है ना, और उसमें हम कैसे ऑल्टरेशंस लेकर आ सकते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हो लोगों को कि वहां से हमें पॉइंट्स आना शुरू हो जाए.
1: तो मैं नॉट ओनली आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपके व्यूअर्स की हेल्प भी करूंगा
0: जी,
1: सो दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिकली डू इट. 9 बजे सुबह वो लोग ये कर सकते हैं.
0: ओके,
1: ठीक है
0: जी.
1: इज इट ओके?
0: जी जी जी, बिल्कुल.
1: सो पहला एग्जाम्पल है, हम लोग शॉप करते हैं एवरीडे रिवॉर्ड्स, मतलब वुलीज पे, वुलवर्थ्स पे
0: जी,
1: ठीक है. बहुत लोग जो है उनका फ्री रिवॉर्ड्स लेते हैं
0: जी,
1: उनका एक पेड रिवॉर्ड्स भी है.
0: ओके,
1: वो $7 मंथ का है.
0: ओके,
1: बहुत लोग लेते नहीं, वो कहते हैं $7 देके क्या फायदा, कुछ करना तो है नहीं.
0: बिल्कुल.
1: बहुत लोग ये नहीं देखते कि वो $7 नहीं है, वो एक्चुअली फ्री है.
0: ओके,
1: अब पूछो फ्री कैसे है?
0: कैसे?
1: क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपने $70 की शॉपिंग करी 10% आपको वापस मिल जाना.
0: अच्छा, तो
1: तो फ्री हो गया ना?
0: तो काफी
1: और 70 से काफी ज्यादा करते हैं जिनके बच्चे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि लोग जाते हैं. और ये हम बहुत लो लेवल की बात कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो दिस इज एट द लोअर लेवल. तो आपके व्यूअर्स ये ना समझे कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ.
0: जी,
1: ठीक है. तो दिस इज एट द बेसिक लेवल. तो एक कोई भी एवरेज फैमिली ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं उनको कोच करूं या वो मेरे फॉलो करें इंस्टाग्राम या टिकटॉक या जो भी है, दे कैन अर्न बिटवीन 50 to 100,000 पॉइंट्स पर ईयर जस्ट फ्रॉम वुलवर्थ्स एंड कोल्स विदाउट स्पेंडिंग मोर देन दे आर ऑलरेडी डूइंग. एग्जांपल, अब हम जिनके बच्चे हैं वो सारे मूवीज देखते हैं, किंग पिन बोलिन जाते हैं, जेबी हाईफाई से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, सबके पास आजकल 13 साल की उम्र से आईफोन है, गैजेट्स हैं, एप्पल मैक है
0: जी.
1: तो अभी आप कोल्स पे जाओ या वुलीज पे जाओ, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते डील लगी होती है 20 points per dollar ऑन एप्पल गिफ्ट कार्ड्स.
0: जी,
1: ठीक है, 20 points per dollar ऑन TCN हिम गिफ्ट कार्ड्स. अब जितने भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 70% से ज्यादा या तो ऊबर ईट से ऑर्डर करते होंगे
0: जी,
1: या ऊबर राइड लेते होंगे
0: जी. बिल्कुल,
1: कम से कम 70% बोल रहा हूँ
0: जी,
1: ठीक है. अब TCN हिम है, TCM हर है, कितने कार्ड आते हैं
0: जी,
1: उनको आप ऊबर में कन्वर्ट कर दो.
0: ओके,
1: 5 मिनट का काम है
0: जी.
1: आपको ऊबर वाउचर मिलेगा, अपने वॉलेट में डाल दो ऊबर के ऐप में. एक्सेप्ट, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग इट टू योर बैंक वीजा और मास्टर या एमएक्स या कोई भी कार्ड से, आप
0: सीधे ऊबर से
1: जाओ, कार्ड खरीदो. वुलीज तो आप जा ही रहे हो, कोल्स तो आप जा ही रहे हो, ये कार्ड खरीदो, टॉप अप करो, आपको 20 पॉइंट. अगर आपका साल में 5,000 भी खर्च होता है, खाने पीने पे, ऊबर से या ऊबर राइड्स पे, बहुत होगा तो बहुत ज्यादा होता है, मैं एवरेज ले रहा हूँ
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है 5,000, व्हाट्स 5,000 बाय 20, 100,000,
0: अच्छा वाह,
1: अभी हमने कोई किसी और स्ट्रेटजी की बात नहीं करी है, ठीक है, और 100,000 एवरीडे रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है वुलीस के इक्वल्स टू 50,000 क्वांटस,
0: वो आपके व्यूज शिफ्ट हो जाते हैं,
1: हाँ वो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन एक वंस ऑफ है, कनेक्ट कर दो, अपने आप पॉइंट जाएंगे, शॉपिंग करी, आपकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले पॉइंट आपके क्वांटस के पॉइंट्स में पहुंचे होंगे, सो आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए वुलीस इज क्वांटस, और कोल्स जो है वो फ्लाईबैस के माध्यम से जाता है वेलोसिटी में,
0: वेलोसिटी में
1: जी
0: ठीक है,
1: कुछ नहीं करना, शॉपिंग करनी है, स्कैन करना है और ठा करके पॉइंट्स आपके क्वांटस में आ जाएंगे, सिमिलरली कोल्स में गए, फर्क इतना है क्वांटस आ जाएंगे उसी सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो कॉल्स के थ्रू 3 दिन लगाते हैं, उनका सिस्टम अलग है,
0: आने चाहिए बस बेसिकली
1: आ जाएंगे,
0: ठीक है,
1: यू डोंट हैव टू वेट फॉर वीक्स और इयर्स, और एक और स्टैटिस्टिक, एक एवरेज ऑजी, चाहे आप इंडियन हो, ग्रीक हो, जो भी हो, साल में एक एवरेज बंदा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 100 to 200,000 पॉइंट्स कमाते हैं इफ दे नो व्हाट दे आर डूइंग और इफ दे थिंक दे नो, मतलब उनको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा कुछ आता है, मैंने आपको 5 सेकंड में एक ऐसा तरीका बता दिया जो आप 50,000 पॉइंट एक एवरेज यूजर सिर्फ एक स्ट्रेटजी से कर सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक है, आप कपड़े खरीदते हो, जैकेट, शूज खरीदते हो
0: जी,
1: अब कितने गिफ्ट कार्ड हैं जो हर महीने लगे होते हैं, हर हफ्ते लगे होते हैं
0: उसी पे,
1: लोग आईफोन खरीदते हैं
0: जी,
1: लोग नया टेक खरीदते हैं, ये कैमरा लगे हुए हैं खरीदते हैं
0: जी जी जी,
1: यू कैन अर्न 10 points पर डॉलर, नॉट 1 point पर डॉलर, 10 points पर डॉलर, और अगर हम बड़ा खर्चा ना भी लें, एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात कर लें, बिजनेस तो आप छोड़ दो, 1 to 5 lakh पॉइंट कोई भी नॉर्मल हाउस होल्ड कमा सकता है इजीली,
0: जो पक्के यूजुअल खर्चे हैं वही करते हुए
1: उनमें, अभी हम बिजनेस तक पहुंचे भी नहीं है, अभी हम बिजनेस, हालांकि मेरा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, दैट इज गेड मोर फॉर बिजनेसेस, क्योंकि साफ सी बात है उनका खर्चा ज्यादा है तो पॉइंट्स भी ज्यादा आएंगे और जल्दी आएंगे, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सारे व्यूअर्स की
0: जी, ठीक,
1: टोटल व्यूअर्स जितने भी हैं, सिर्फ सिंपल चीजें करने से 1 to 5 lakh पॉइंट, अब आते हैं दूसरी बार जस्ट क्विकली 3 lakh पॉइंट ले लेते हैं, 3 lakh पॉइंट का मतलब क्या है
0: जी,
1: कमा तो लिया आपने, 3 lakh पॉइंट का मतलब है कि आप अ फैमिली ऑफ टू, हस्बैंड वाइफ और टू फ्रेंड्स और अ कपल और अ पार्टनर कैन गो टू एशिया एंड कम बैक इन बिजनेस क्लास
0: 3 lakh पॉइंट पे,
1: हाँ जी,
0: सिर्फ टैक्सेस पे 1.5 lakh की टिकट हो गई आने जाने
1: एवरेज,
0: ओके
1: 70,000 की भी हो सकती है, 80,000 की भी हो सकती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, मतलब कि सिंगापुर, बैंकॉक, वियतनाम, बाली, हांगकॉन्ग, ठीक है, एशिया में मोस्ट प्लेसेस में आप 3 to 3.5 lakh पॉइंट में आ सकते हो, अगर आपने ऑर्गेनिकली अर्न किया है, सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं, अब टैक्सेस सुनो कितने के होते हैं, 200 to 500 के बीच में
0: जी,
1: मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो 500 लगा लो, दो बंदों के 1,000 हो गया रिटर्न, तो अगर रिटर्न 1,000 है, 1 to 2 कितना हो गया,
0: 2,000 हो गया,
1: मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रैवल एजेंट 2,000 में 2 लोगों की टिकट बिजनेस क्लास में मेलबर्न टू एशिया करता है,
0: ओके जब आई गेट योर पॉइंट है ना, जब आप ये कहते हैं कि 50,000 तो हम इसी में से ही निकाल सकते हैं, सिर्फ वूलीज में से, अगर आपका 5-6 हज़ार का है ना, एक स्ट्रेटजी होगी ना, ऊबर कैश की तरफ से भी कर सकते हैं कि अगर आप ऊबर का कार्ड कर लें तो उसमें भी कोई ना कोई है ना,
1: कॉल्स के निकलते हैं सिर्फ ऊबर के,
0: ये सेट प्रेसिडेंट पक्के ही होते हैं कि ये चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम की, आज है कल वुलीज बंद कर दे, या फिर ये कुछ पक्के अदारे हैं, कोई पक्के बिजनेसेस हैं जो क्वांटस पॉइंट्स पता है कि मिलेंगे ही मिलेंगे,
1: काफ़ी टाइम से 12 साल से तो मैं कर रहा हूँ और पिछले 4-5 साल से तो ये वुलीज कर ही रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं
0: जी,
1: बंद करने को तो सर कल कुछ भी बंद हो सकता है, राइट, कल किसने देखा, नो वन हैज़ अ क्रिस्टल बॉल
0: जी,
1: ठीक है ना, बट अभी कंसिस्टेंटली अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम ना भी लें, 3 साल से तो मैं और मेरे 300 से ऊपर बिजनेस क्लाइंट्स कर रहे हैं,
0: ओके,
1: रेगुलरली किसी ना किसी का आता है टेक्स्ट या कॉल कि मेरे को अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देना है, कौन सा गिफ्ट कार्ड अभी चल रहा है, बिकॉज दे हैव नाउ रियलाइज, उनको पता लग गया है कि अब उनको सीधा कैश वुली जाके कैश नहीं देना, अब उनको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना है, ठीक है, और तब करना है जब ये ऑफर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जिनके पास एम्प्लॉयज हैं या आप एम्प्लॉयज को भूल जाओ, आप हमारे इंडियन कम्युनिटी में बर्थडे पार्टीज होती हैं
0: जी,
1: ठीक है, हम सबको कैश देते हैं, एनवेलप देते हैं, कुछ देते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड दे, अगर आप गिफ्ट कार्ड दे सकते हो, काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं उन वो 3-4 जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो वहीं से लेते हैं, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, आपका H&M हो गया, ठीक है। अब ये सारे जो रिटेलर्स हैं इनके अलग से गिफ्ट कार्ड आते हैं, जैसे TCM ही हो गया, हिम में आप 50 रिटेलर्स के पास जाके वो सेम कार्ड यूज़ कर सकते हो।
0: और ये इजीली फिजिबली मिल जाते हैं, मैंने देखा हर सुपरमार्केट में, कोल्स में और वूलीज में,
1: हर हफ्ते कृष्णा हर हफ्ते किसी ना किसी गिफ्ट कार्ड पे डील लगी होती है, एवरी वीक। इस साल अभी आज क्या हो गया, जून हो गया
0: जी,
1: सिर्फ 2 हफ्ते ऐसे आए हैं जहाँ पे 10% ऑफ था।
0: ओके,
1: उसके अलावा हर वीक 10 पॉइंट्स पर डॉलर ऑन गिफ्ट कार्ड्स।
0: Okay.
1: ये अगर आप सोचो कि 100-150 स्ट्रेटजीज हैं, ये एक बता रहा हूँ मैं अभी।
0: फिर बात ये आ जाती है, कई लोग इस पे बड़ा भाग जाते हैं कि यार इतना इतना कौन सोचे, क्या करे, कोई थंब रूल हो, कोई मुझे पता हो कि एक होता ना टिप हो, एक ट्रिक हो कोई, कि मुझे पता कि इस तरह ट्रैक करना, एनीथिंग विच इज शेयरेबल ऑन योर पार्ट ऑल्सो, कि आप शेयर कर सको छोटा मोटा। मुझे पता कि ऑब्वियसली यू रन अ बिजनेस,
1: डेफिनेटली हेल्प यू,
0: बुलाया
1: आपको, मैं थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ट्रैकिंग की बात है, देखो हम भी इंडियंस, हम बहुत वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वी पे द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स
0: जी।
1: सो इफ यू, जहाँ तक ट्रैकिंग की बात है, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँ, आप एक स्प्रेडशीट बना लो, सिंपल स्प्रेडशीट। आजकल तो AI आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ChatGPT क्लॉड, लोग ड्राइव करते करते अपनी ईमेल्स टाइप कर रहे हैं। आप उतना मत करो, आप ChatGPT को, और आपसे स्पीच टू टेक्स्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ बोलो, रिकॉर्ड करेगा, स्प्रेडशीट बन के आ जाएगी, आप जस्ट रिकॉर्ड करो। दूसरी बात आती है कि कितना फीजिबल है, इसलिए मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, बिकॉज इट्स ईजियर, क्योंकि उनको सिर्फ एक या दो मोटी मोटी स्ट्रेटजीज अपनानी है, ये सब छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आई वाज ट्राइंग टू हेल्प यू फॉर लाइक ऑल द व्यूअर्स, बट जो बिजनेसेस हैं, अगर वो सिर्फ अपना बिजनेस स्पेंड रीडायरेक्ट कर दें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50% तो ऐसे हो गया। बट एक साफ सी बात है कृष्णा, अगर आपको अप टू 90% ऑफ चाहिए, बिना एफर्ट के नहीं मिलने वाला दोस्त,
0: तो बात ठीक है,
1: ठीक है ना, कोई भी चीज बिना एफर्ट के नहीं मिलती। जितने भी लिसनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो आए हैं, बिना एफर्ट के नहीं आए, कोई स्टूडेंट बन के आया है, कोई PR लेके आया है, एक बंदा मुझे बता दो जो एक दिन के एफर्ट के पीछे सब कुछ करके आ गया हो, राइट
0: जी,
1: इट टेक्स एफर्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 90% बिजनेस क्लास सिंगापुर एयरलाइंस की लेस में मिले, और आप ये भी चाहते हो कि एफर्ट भी ना हो, कैसे पॉसिबल है
0: इसमें कोई, बिकॉज द मोर एग्जांपल्स आई गेट द मोर इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और लोगों के लिए भी उतने मेरे ख्याल से इजी होगा। कोई एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर समझा सकें, आपका पर्सनल हो या आपके किसी क्लाइंट की टेस्टिमनी के हिसाब से अगर हो।
1: सो अभी एक रिसेंटली मैं ग्रुप कोचिंग करता हूँ
0: जी,
1: राइट, आई डू 1-on-1 कोचिंग एंड आई डू ग्रुप कोचिंग। तो ग्रुप कोचिंग में अभी अभी एक ग्रुप खत्म हुआ है, उसमें एक एशियन लेडी है, शी इज़ अ डॉक्टर यहाँ मेलबर्न में, नॉर्थ कट में, उनका अभी छोटा बच्चा है, टॉडलर, तो उनको सिंगापुर जाना था नेक्स्ट ईयर फरवरी में, बट उन्होंने नहीं बनाया प्लान बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो इन इकॉनमी। बिजनेस सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कॉस्ट देखी 30 grand, उनका रहने देते, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देन दे हर्ड अबाउट मी, उन्होंने मेरी एड देखी फेसबुक पे, बात करी, मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करी, देन दे ज्वाइन माई प्रोग्राम
0: जी।
1: ठीक है, अभी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी,
1: जस्ट ये स्ट्रेटजीज मैंने अभी शेयर करी हैं
0: जी,
1: सिर्फ ये करके लास्ट 2 months में उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि उन्होंने अपनी बिजनेस क्लास की टिकट्स खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बेबी के लिए 3,600 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बुक करी है टू सिंगापुर रिटर्न।
0: अच्छा वाह,
1: $3,600 AUD फॉर 2 adults एंड अ टॉडलर रिटर्न। आप बता दो कि इट इज अ गुड डील और नॉट?
0: इट इज अ गुड डील, काफी गुड डील वैसे तो।
1: हाँ, अब ये जो लेडी है ये थोड़ी सी एनालिटिकल है, तो इन्होंने स्प्रेडशीट बनाई और देखा कि कितने घंटे लगे इनको ये सब कुछ करने में। 5 hours ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी व्यूअर से, अगर ये टिकट, वैसे ये टिकट्स 15,000 की थी
0: जी,
1: इफ यू डिवाइड 15,000 बाय 5 आवर्स कितना आता है?
0: 3,000।
1: हाँ अब आपके व्यूअर्स से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ योर व्यूअर्स वुड लाइक टू अर्न $3,000 पर आवर? सिंपल मैथ है ना
0: जी। इसमें एक अगर हम ये भी टेंटेटिव प्राइस बता सकें कि उसी सेम फ्लाइट में इकोनॉमी का अगर हम आइडिया लें तो इकोनॉमी का क्या प्राइस रहा होगा?
1: इकोनॉमी तो कृष्णा और भी इजी हो जाएगी और भी सस्ती होगी। इकोनॉमी तो आई थिंक अभी पीछे फैमिली ऑफ सिक्स है तो एक ही प्लेन में 4 से ज़्यादा सीट्स मिलना मुश्किल होता है
0: जी
1: बिजनेस क्लास, क्योंकि अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है एयरलाइंस पे कि वो कितनी रिलीज कर रही हैं। बट उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी में भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी थी, उनको बस पैसे बचाने थे।
0: ओके
1: राइट, साफ सी बात है। तो दे वर वेरी ओपन अबाउट इट। अब उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि $1,200 में फैमिली ऑफ सिक्स इज गोइंग टू इंडिया एंड कमिंग बैक। फैमिली ऑफ सिक्स, क्योंकि बाकी उनके पॉइंट्स ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक मतलब गिफ्ट कार्ड्स, अभी मैंने इंश्योरेंस की बात नहीं करी है, होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस,
0: ये सभी चाहिए हर कोई रह लेता।
1: कार किसके पास नहीं होती आजकल, प्राइवेट टैक्स किसको नहीं बचाना, राइट? कार, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, आपके पास घर है, कॉन्टेंट और होम इंश्योरेंस चाहिए। देर आर सो मेनी कंपनीज गिविंग यू अप टू 100, अभी कॉन्टेस्ट की डील चल रही है राइट नाउ एज वी स्पीक, 2,00,000 पॉइंट दे रहे हैं वो।
0: अच्छा,
1: प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे अप टू 200,000।

0: huge. Huge.
1: और इसमें ये ज़्यादातर बिजनेस स्पेसिफिक रहती हैं ये डील्स वगैरह, कि अगर कोई कहते हैं नौकरी पेशे वाला कोई हो उसके लिए
0: कर सकते हैं, बट यू नीड अ फायर इन द बेली, लाइक एक बहुत ही जुनून चाहिए आपको करने के लिए. क्योंकि पहले पहले सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि एफर्ट लगेगा, कोई ईजी तरीका, तो वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढने में लग जाते हैं, राइट. बट अगर कोई भी बंदा या फैमिली 8 से 15 आवर्स अगर आप लगा सकते हो, मैं ओवर अ 6 मंथ पीरियड बोल रहा हूँ, इफ यू कैन डेडिकेट, क्योंकि कुछ टास्क में 5 मिनट लगेंगे, कुछ में 10 मिनट, कुछ में 15 मिनट लगेंगे, ठीक है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू अर्न पॉइंट्स कैन बी डन वाइल सिटिंग एट होम ऑनलाइन
1: एंड नो एक्स्ट्रा खर्चा.
0: ये
1: मेन है.
0: आई नो
1: बाकी बात
0: आई नो ये मेन है, बट ये मेन नहीं होना चाहिए. बिकॉज मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको बिजनेस में ट्रेवल करना है और आप ये बोलो कि मेरी इकोनॉमी की टिकट 2000 की आती है, 1800 में नहीं हो सकता.
1: हाँ ठीक है, राइट. मतलब कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली यू विल गेट अ रिटर्न.
0: हाँ लेकिन मेरे जो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि यार अगर हमें 2.5 की जगह 3 भी देने पड़े लेकिन 10 ना देने पड़े.
1: हाँ वो तो हाँ, मतलब एवरीबडी लाइक्स अ गुड
0: डील, एवरीबडी वुड लाइक टू डू इट, राइट. इवन विदाउट डूइंग अ सर्वे 90% ऑफ योर क्लाइंट जो आपके लिसनर्स हैं अगर वो ये बात सुने तो 90% विल पुट द हैंड अप एंड से ये मुझे 10 नहीं खर्च करने, लेकिन अगर 2 की जगह 2200 या 2500 या 3 खर्चने पड़े और बिजनेस क्लास मिल रही है, विच मीन्स लाउंज 40 किलो, हमें क्या चाहिए होता है. लोग वेट एडजस्ट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे. और एक और चीज़ है, जेट लैग. एटलीस्ट 5 families इन द लास्ट 6 days हैव टोल्ड मी कि हॉलीडे से आए, बेटी बीमार हो गई, स्कूल नहीं गई, गेस घर पे कौन बैठा है? पेरेंट्स.
1: बिल्कुल सही.
0: और अगर बैठे हैं तो ख्याल किसको रखना है? पेरेंट्स को.
1: बिल्कुल.
0: तो वो प्रोडक्टिविटी कहाँ गई? पेरेंट्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी ना.
1: बिल्कुल सही बात है.
0: और जब वो बिजनेस में जाते हैं तो कोई जेट लैग नहीं होता.
1: ये वेट का तो बहुत इश्यू रहता है,
0: ठीक है ना.
1: पर्सनली बहुत रोता हूँ इस चीज को लेकर, तो आपकी बात तो सही है.
0: तो और प्रीमियम इकोनॉमी तो इतना आसान है कृष्णा, अगर आप बिजनेस को छोड़ भी दो, प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करना इज सो इजी फॉर अ फैमिली ऑफ 6, नॉट इवन 4.
1: अगर मैं इसे, सॉरी आपको टोका, अगर मैं इसे डाइसेक्ट कर दूं
0: जी,
1: मैं अगर पर पर्सन पर चलूं
0: जी,
1: तो अगर ऑन एन एवरेज मैं 80,000 पॉइंट कह लूं कि 80,000 पॉइंट में मेरे को 1 way की बिजनेस की टिकट मिल सकती है फॉर अ,
0: आप 1 लाख चलो मोटा मोटा,
1: चलो 1 लाख पॉइंट में ठीक ठाक बढ़िया एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस टाइप पे, है ना. तो प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी सेम उसी फ्लाइट की कितने पॉइंट्स में मिल जाती है?
0: So,
1: पर हेड
0: हम सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें तो उनके जो फ्रीक्वेंट फ्लायर का नाम है वो है क्रिस फ्लायर
1: जी,
0: ठीक है. आपको 1 लाख में अगर आप टाइम से करा लोगे तो 1 लाख क्रिस फ्लायर में मेलबर्न दिल्ली मिल जाएगी
1: जी.
0: इकोनॉमी होगी आपकी, प्रीमियम इकोनॉमी होगी अराउंड 75 की.
1: ओके
0: एग्जैक्ट तो मेरे को अभी नंबर नहीं पता,
1: बिजनेस का मुझे
0: पता, बिजनेस का मुझे पता बिकॉज आई डू इट एवरी डे. प्रीमियम इकोनॉमी होगी 70 से 80 के बीच में, 68 भी हो सकती है, अराउंड 70 लगा लेते हैं
1: जी.
0: और इकोनॉमी तो सिर्फ 50 में मिलती है. और एक और चीज आपके व्यूअर्स के लिए एक टॉप हैक बता रहा हूँ, अगर आपके पास सिंगापुर एयरलाइंस के पॉइंट्स नहीं भी हैं लेकिन आपके पास वेलोसिटी के पॉइंट्स हैं वर्जन ऑस्ट्रेलिया के, तो भी आप सिंगापुर एयरलाइंस की प्रीमियम इकोनॉमी बुक कर सकते हो.
1: ओके
0: एंड फॉर लेस पॉइंट्स देन सिंगापुर एयरलाइंस ओन प्रोग्राम.
1: ओके
0: मतलब जो उनका खुद का प्रोग्राम है
1: अच्छा,
0: उससे सस्ते में, उससे कम पॉइंट्स में आप वेलोसिटी के पॉइंट्स यूज करके सिंगापुर उन्हीं का प्रोडक्ट में आप फ्लाई कर रहे हो.
1: ओके अब इसमें एक और आ जाता सवाल कि अब अगर मैं देखूं लोगों का जो इंटरेस्ट है, रुझान है, वो इस तरफ काफी जाना शुरू हो गया पॉइंट्स वगैरह
0: जी
1: इकट्ठे करने पे, तो ये कंपनीज, क्योंकि आप कह रहे हो आप यू बीन डूइंग दिस फॉर 12-13 years, है ना, तो ये कंपनीज इंसेंटिवाइज अब ज्यादा कर रही हैं पहले से कि कम कर रही हैं?
0: 100% ज्यादा कर रहे हैं. अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टेस्ट 2 लाख पॉइंट दे रही है,
1: तो बढ़ रहा है, मतलब
0: बढ़ रहा है. अभी AMP बैंक है. एक और चीज हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए, हमारे हम सेविंग्स में पैसा डालते हैं, राइट, 4.25% इंटरेस्ट जो भी है
1: जी,
0: उससे क्योंकि उस पर टैक्स लगता है
1: जी.
0: आप अभी AMP बैंक की डील चल रही है, आपको वो 1 point per $10 दे रहे हैं टू हैव इट इन योर बैंक अकाउंट. बहुत लोग ऑफसेट में रखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत आपके व्यूअर्स होंगे जिनका 10, 50, $1 लाख बैंक में ऐसे ही पड़ा हुआ है. उसको अगर

0: ए एम पी बैंक में डाल दो तो आपको महीने के 10 से 50 हज़ार पॉइंट तो सिर्फ उस खड़े पैसे के मिल रहे हैं. मतलब इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग. आप एक बार सोच कर देखो, व्हाई विल अ बैंक डू दैट.
1: ठीक है, मैं इसमें ना बस ये आपने जितना बताया, थैंक यू वेरी मच. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या हो गया था लाइफ में
0: जी,
1: ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या घटना हो गई जो आपने इस तरफ रुख कर लिया
0: जी.
1: बिकॉज हैविंग सेड दैट, ये मैं आपने क्या बताना है मैं ही बता दूं कि क्वांटस हो गए या वेलोसिटी वगैरह हो गया, या फिर इन्होंने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिया, किसी बैंक कंपनी का नाम लिया, तो वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यू आर नॉट कमीशन्ड बाय देम.
0: नो,
1: आप उनके एजेंट नहीं है.
0: नहीं, मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है.
1: एफिलिएशन किसी के साथ ऐसा नहीं है, सच नहीं है. ये आपने देखा खुद से किया और आपको लगा कि ये और लोग भी सीख सकते हैं, राइट? तो ये आपने जब देखा तो कब देखा और फिर कैसे ठीक किया?
0: ओके सर, 2 अगस्त 2013 को मुझे आज तक याद है, मैं लंदन गया था अपने भाई से मिलने के लिए
1: जी.
0: वो 2 साल के लिए लंदन गया था.
1: ओके
0: तो उसने बुलाया मुझे. तो उस टाइम पे एक कार्ड हुआ करता था, वेस्टपैक का क्रिस फ्लायर कार्ड, जो अब नहीं है.
1: ओके
0: ठीक है, वो लेगेसी कार्ड है, वो बंद कर दिया
1: जी.
0: उस टाइम मेरे पास 90,000 पॉइंट थे.
1: ओके
0: अब एज यू डू, आजकल सोशल मीडिया पे आप बैठते हो, ये एक चीज दूसरी पे चली जाती है, दूसरी तीसरी पे चली जाती है
1: जी.
0: तो मैं बैठा बुक करने के लिए टिकट, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड खोला, देखा ये 90,000 पॉइंट है. इससे पहले कि मुझे समझ में आता, मैं सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट के थ्रू मेलबर्न टू लंदन सिंगापुर एयरलाइंस बिजनेस क्लास $100 में बुक कर चुका था.
1: ओके
0: जब मैंने उसका बाद में प्राइस देखा तो वो 6,500 की थी उस टाइम पे.
1: अच्छा, उसने खुद से अपने आप को वहां पर ट्रांसफर किया. ओके
0: क्योंकि मैंने अपने लॉग इन किया अपने क्रेडिट कार्ड के पोर्टल में देखने के लिए कि भाई कितना बैलेंस है क्या है, तो वहाँ पॉइंट्स लिखा आ रहा था 90,000. तो मैंने देखा कि क्रिस फ्लायर है, तो क्रिस फ्लायर तो सिंगापुर एयरलाइंस का प्रोग्राम है. देखा ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर साथ के साथ हो गए. हो गए तो वहाँ पे चीज़ लेके आ रही थी अवार्ड्स रिडीम. बटन दबाया, बैठे हो बटन दबाते हो, बटन दबाए तो डाला और टिकट आ गई अवेलेबल. 90,000 पॉइंट चाहिए थे, 90,000 थे
1: जी.
0: अब शुरू कैसे हुआ कि मैं चला तो गया बिजनेस क्लास में बड़ा खुश होके $100 में, लेकिन वापस आया इकोनॉमी में.
1: पॉइंट खत्म हो गए.
0: पॉइंट ही नहीं. अब आप खुद सोचो, आप इतनी चौड़ी, आपने देखी है सीट सिंगापुर एयरलाइंस की?
1: जी जी जी.
0: ठीक है
1: जी.
0: इतनी चौड़ी होती है
1: जी,
0: राइट? और इकोनॉमी कितनी होती है?
1: हाँ,
0: आपको ऐसे खाना पड़ता है.
1: मेरा तो ज्यादा बुरा हाल होता है, मैं तो घुटने
0: आप अपने टक ये, हाँ
1: यस,
0: आपके मोड़े टकरा रहे हैं साथ वाले के साथ
1: जी.
0: ठीक है,
1: बिल्कुल.
0: तो जब मैं वापस आया तो मैं लिटरली टीयर्स में था, जैसे कहते हैं ना मैन टीयर्स, लिटरली टीयर्स में था. तो मैंने फिर सोच लिया कि बस अब मैंने कुछ करना है, इसको पढ़ना है. तो वो अगस्त 2013 से लेके अगस्त 2014 तक मेरी उस टाइम पे बहुत स्टेबल जॉब थी. तो मैंने अपनी इवनिंग्स और वीकेंड्स इसको डेडिकेट किए.
1: ओके
0: और फिर अगस्त 2014 से लेके आज तक मैंने फुल प्राइस नहीं पे किया. बट बिजनेस मैंने 2021 में शुरू किया, एक फ्रेंड की हेल्प करी.
1: Okay.
0: तो उसने मुझे बोला कि यार तूने मेरे $20,000 बचा दिए 10 मिनट के अंदर. उसके पास 1 मिलियन पॉइंट्स थे, लेकिन उसको पता नहीं था करना क्या. तो उसने कहा तू इस चीज दूसरों को सिखाता क्यों नहीं है. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड हेल्पिंग अदर बिजनेस ओनर्स.
1: क्या बात है भाई, रॉकस्टार में था, टूटे दिल से ही म्यूजिक निकलता. आपके ट्रॉमा से काफ़ी लोग सीख पाए हैं और सीख रहे हैं. थैंक यू गगन जी शॉर्ट एंड क्रिस्प चैट करने के लिए हमारे साथ. जाने से पहले एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट कह लें अपनी तरफ से, या क्लोजिंग थॉट अपनी तरफ से, और अपने सोशल्स और अपने वेबसाइट के बारे में बता दें हमारे व्यूवर्स को, ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट यू.
0: जी, पहली बात तो ये है कि देखो, पैसा बचाना किसको नहीं अच्छा लगता
1: जी,
0: और अच्छा लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए
1: जी.
0: ठीक है, मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स वुड बी बिटवीन 30 and 60 years of age, so they have lived their first half of their life. और लोगों को होता है कि यार मैं अपना सेकेंड हाफ तो कम से कम थोड़ा सा कम्फर्ट में बिताऊँ. तो जब हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतनी आउटगोइंग्स जा रही हैं, अगर एक तरीका है उसको मैक्सिमाइज करने का बिना पैसे खर्च किए. अभी ऑर्गेनिक पॉइंट्स की बात हो रही है, हमने बिजनेस की बात तो करी ही नहीं ज़्यादा. ठीक है, अगर एक तरीका है तो मैक्सिमाइज इट, तो आप क्यों ना करो, स्पेशली अगर आपकी फैमिली को या तो उसमें कंफर्ट मिल रहा है या पैसे बच रहे हैं. ठीक है, नाउ इन रिगार्ड्स टू गेटिंग इन टच विद मी, जो भी आपके बिजनेस व्यूअर्स हैं जो खुद का बिजनेस रन करते हैं, दे कैन गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो या फिर इंस्टाग्राम हो एंड यूट्यूब, ऑल दे हैव टू डू इज टाइप इन टर्न लेफ्ट फॉर लेस. क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो हम राइट टर्न होते हैं टू इकोनॉमी. वेयर डू वी टर्न लेफ्ट इन टू बिजनेस एंड फर्स्ट. तो मेरे बिजनेस का नाम उसी से आया, टर्न लेफ्ट फॉर लेस. तो अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो डाल देंगे तो हर पोस्ट में मेरा या तो लिंक होगा या वेबसाइट होगी. और अगर आपके बिजनेस लिसनर्स मेरी मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं जो हर महीने होती हैं, इस महीने वो 24th जून को है, देन द वेबसाइट एड्रेस इज एल पी, ठीक है, एल फॉर लीमा, पी फॉर पापा, एल पी जैसे लैंडिंग पेज होता है ना, lp.turnleftforless.com.
1: जी.
0: और लास्ट थिंग, अगर किसी को डायरेक्ट ईमेल करनी है तो वो info@turnleftforless.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं. कोई भी उनका क्वेश्चन हो आपके, अगर वो रेडियो हांजी करके लिखेंगे, आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन.
1: इसलिए तो बुलाया कि जी रेडियो हांजी के हवाले से आप इनसे बात करें, फ्री कंसल्टेशन ले एक बार, और फिर बाद में जैसा आपका मन माने, वन ऑन वन करनी है जी, मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं. ये था जी आज का सेगमेंट आपके लिए, हम लेकर आए थे स्पेशली जानने के लिए कि भाई ये क्वांटस फ्लायर की दुनिया, ये वेलोसिटी पॉइंट्स की दुनिया, ये सब भी एक चलता हुआ एक पैरेलल सिस्टम है टू बुक योर फ्लाइट्स. और पैसे बचाने के लिए, पैसे खर्चा आजकल काफ़ी बढ़ भी गया है. एपिसोड कैसा लगा, और ये भी हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि जब आप गगन जी से बात करें तो आपको कैसा लगा, और आपकी लाइफ में कोई ख़ास तब्दीली आई या नहीं आई, कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए. ये था हमारा प्यारा सा स्पेशल सेगमेंट. मैं हूं कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय, देखते रहें सुनते रहें रेडियो हांजी 1674 AM.

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 04332802552 ते 4 Double 3 4 6 5 4 9 2 Now Jit Party Nazar Hai Bola Oye Poli Oye Di Zabardast Kaam Ya Bhi To Baad Geet MP3 Te Jagjit Sandhu Films Le Aaye Ne Haas Se Masti Te Emotional Par Poor Film Bole Ne Kasoote Pasate Oye Poli Oye 2 Comedy Drama Te Entertainment Da Pura Tadka 12 June Nu Puri Family De Naal Nazdiki Cinema Kalan Vich Dekhna Na Bhulyo Oye Poli Oye 2
2: Rose Shopping Ga Hundiyan Ne Pata Nahi Keda Devta Razi Kita Inna Ne Suraj Devta Ki Matlab Oh Kamliye Sun Current Valiyan Ton Jyada Inna Ne Solar Panel Lagwaya Ta Inna Di Savings Vad Gayi Mainu Nahi Pata Aapan Vi Solar Panel Call Sun Current 04 Sortali 06 4 94 Sala Ton Best Service Layi Ek Hi Naam Sun Current Deo Radio Hanji Da Hawala Te Pao 200 Dollar Da Discount Vi

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: जानकारी ही शक्ति है अते नवे हुनर सीखण नाल तुहानू अपने भविख नू नियंत्रित करण दी शक्ति मिलदी है। मेलबर्न पॉलीटेक्निक दीआं डिग्रियां, डिप्लोमे अते सर्टिफिकेटां दी श्रेणी दे नाल तुसी नवीआं योग्यतावां अते एक बिल्कुल नवा करियर शुरू करन दा मौका पा सकदे हो। जुलाई विच शुरू करन दे लई melbournepolytechnic.edu.au ते जाओ। सीखना कदे ना रोको। RTO 3075।
3: हां जी हां जी ओए हां जी हां।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
3: कित्थे वज गई तेरी गड्डी?
1: गड्डी तां ठीक होजू, पर इंश्योरेंस वालियां नूं, लीगल वालियां नूं इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: की होया
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 9077-9733
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुहाडे नाल।

0: करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93
0: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 9077-9733
0: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुहाडे नाल। हां जी हां।

काले नमस्तस्तद्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वदन्दे नमो सत्वन्दे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तत रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबाह है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रपाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुख प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करदा अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग प्रछंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाते नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहसाय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तं प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आदि से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपे सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

अलंकार अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां बरनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछ जदेश के आभ जेश के आगा जिकर्म के आ भंज

तं कृति है कि छत्रं छत्री है कि ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है कि आप अभेव है कि चक्रं बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है कि गैब गैब है कि अफल गुना है कि साहल सुना है कि कारण कुनंद है कि रोजी दहंद है कि राज ग्रहीम है कि कर्म करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोग है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परमंग फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलामे सली खुदमुदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साक शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकं परनास है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम परनास है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईस है समस्त अधीश है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है के जुर जुमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गण मुदाम हर बार अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अपार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है तृत के तरण है जग के करण है मनमानीय है जगजानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है भव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हर्ताहर है परमात्मा में सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंग शांत रूपे नमो परंग ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए शराब सद समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे पारी पजान कपूर बलि बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपत अंधको नांगे पाएं बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे पूत पवेख पवान के पुपत कौन कने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जब तार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान।

0: नहात फिरो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिखु बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

जंत सब तो दो पाए, एक वेक परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कह नानक

माया अगन सावी को जई करता है खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

0: देवते सारिआं नूं दे प्रकाश देण वाला तू उन्हां विच प्रकाश रूप है
1: नरहरा
0: जितने भी विधि नूं रचन वाले विधि नूं रचन वाले जितने भी ब्रह्म आदक विष्णु आदक शिवजी आदक जां जिन्ने भी देवते ने जां नरहरा जितने भी मनुख आदक जीव ने सारिआं च समारिआं जोत रूप करके
1: आराधे जेहवा एक
0: तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहेब गुणी निदाना हमारे कहने जेहवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरे अंत न कहनी लही है एक जीव ना तेरे बेअंत गुणा नु किमे गावा तू बेअंत है अंत तो रहत है तेरे गुण समग्र गाए नहीं जा सकते
1: अविनाशी अपर परा
0: तू महाराज सच्चे पातशाह कहंदे नाश तो रह

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, जो अध्यात्म के सागर से आपके दिन को पॉजिटिव बनाने वाले ज्ञान के मोती चुन कर लाता है। हमें जो ये मानव जीवन मिला है, जानते हैं ना आप कितने जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है? मनुष्य जीवन को पाने के लिए 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उसका अनुभव करने के बाद ही हमें ये मानव शरीर प्राप्त होता है। इतना बहुमूल्य मानव जीवन, क्या आप सोने, खाने, पीने या बच्चे पैदा करने में बिताकर इसी चक्कर में पड़े रहना चाहते हैं? अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं, धन्यवाद से कीजिए। जो नहीं है उसकी चिंता करने के बजाय जो है उसके लिए भगवान का आभार व्यक्त कीजिए। सुख भविष्य की चिंता में है या वर्तमान क्षण में छिपा है, जानते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने कानों के माध्यम से। मैं हूं आपका दास। मित्रों, वास्तविक सुख धन बैंक की तिजोरी में नहीं है, बल्कि संतुष्ट हृदय में होता है। एक बार एक राजा का सेवक था जो सदा मुस्कुराता रहता, बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी राजा की रोज मालिश करता, और बदले में राजा उसे एक सोने का सिक्का देता। हर रोज एक रुपया मिलता, उसी में वो अच्छा खाता पीता, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता और चैन की नींद सोता। रात में उसके पास एक पैसा भी नहीं बचता और अगली सुबह फिर नया दिन शुरू हो जाता। राजा को उसकी खुशी देखकर हैरानी होती। राजा खुद चिंताओं से घिरा रहता और अपने सेवक की निश्चिंतता को देखकर जलन महसूस करता। राजा ने ये बात अपने मंत्री को बताई और कहा, मुझे इसकी खुशी का राज समझना है। मंत्री ने योजना बनाई। उसने रात को मालिश करने वाले सेवक के घर में एक 99 सिक्कों से भरा थैला रखवा दिया। सुबह जब उस सेवक की आंख खुली तो क्या रिएक्शन था सेवक का, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो सुबह जब सेवक को वो थैली मिली जिसमें 99 सोने के सिक्के थे, तभी उसके मन में ख्याल आया कि अगर एक सिक्का और मिल जाए तो पूरे 100 हो जाएंगे। उसने तय किया कि आज राजा से जो सिक्का मिलेगा उसे खर्च नहीं करूंगा। यहीं से इसकी परेशानियां शुरू हो गई। पहले वो आज में जीता था, अब कल की चिंता करने लगा। धीरे धीरे उसकी खुशी खत्म हो गई, वो उदास रहने लगा और काम पर भी उसका मन नहीं लगता। राजा ने जब उसकी हालत देखी तो पूछा, तुम आजकल इतने परेशान क्यों रहते हो? वो बोला, एक रात मुझे 99 रुपए मिले थे, तब मेरी नींद और खुशी दोनों गायब हो गए। 99 को 100 करने में जुट गया हूं और परेशान हो गया हूं। तब राजा को समझ आ गया। और आपको भी समझना चाहिए कि आदमी की असली चिंता का कारण 99 का चक्कर है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि इच्छाओं का अंत भोग से नहीं बल्कि संतोष और भगवान की शरण से होता है। हमारे पास स्वस्थ शरीर है, परिवार है, मित्र, भोजन, रहने का स्थान है और सबसे बड़ी बात भगवान का नाम सुनने और स्मरण करने का अवसर है। जैसे ही हम भगवान का नाम श्रवण करते हैं वो हमें पुण्य देते हैं जिससे हृदय में कृतज्ञता आती है, जीवन में सुख अपने आप बढ़ने लगता है। तो आपने क्या करना है इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252।
1: चलदी दा नाम गड्डी आ ते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-655 और विजिट tireforce.com.au।
2: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
3: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानूं वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
4: या तू

0: लो जी तोड़ी नजर है
1: बोला ओए पोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: बोले ने कसूते बसाते
1: ओए पोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए पोले ओए टू
3: जी की हाल है पिट दर्द दा
1: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है थैंक यू एदे बारे दसन लई
3: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654 92
1: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पार्टी घर नु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.

0: ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
3: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet ले गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हां जी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford।
4: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
5: सूरज देवता
4: की मतलब?
5: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
4: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
5: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
0: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसेयोग नाम, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट, पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
6: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, थोड़े घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
7: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स। यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252।
3: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, Radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
4: Rose, rose shopping ga hundiyan ne. Pata nahi kehda devta raadi kita hai inhane.
5: Suraj Devta.
4: Ki matlab?
5: Oh kamliye, Sun Current walyan ton jadda inhane solar panel lagwaya ta inna di savings vadh gayi.
4: Mainu nahi pata. Aapa vi solar panel lagwana hai hune.
5: Tusi vi karo bachat te lagwao solar panel. Call Sun Current 0448-06-494 te. Saalan ton best service layi ek hi naam. Sun Current. Deo radio hanji da hawala te pao $200 da discount bhi.
0: Ki chahida? Australia da visa launa? जब वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए। किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, थोड़े घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट
1: bansallawyers.com.au।
6: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: भैन जी की हाल है पिट दर्द दा?
8: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू इहदे बारे दसन लई।
6: होर सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बैड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बैड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टे करनु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: गड्डी हाते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा।